0: लकड़ा हार्ट बीट हंगन वेला मदकरण गुदे दहाय विनाडी पनस देखाय
1: लुकैया मारे वेडेने हुने डॉक्टर के वाले मारे मेमोरी लॉस कीला मेमोरी लॉस कॉल द डॉक्टर याद सुनद மாமா கிடைக்கு புண்ணிய ஐயா சீனி விடுனு முக்கு தத்த போய் விடுக்கிறேன் ஐயா
2: மாட்டா
1: சூப்பரி டாக்டர்னே டாக்டர் ஹரியிடம் கீழ தீரவானே
3: ஹினா வெவி சிந்து வகன்ன FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Even in driving, Shamit and Charu.

0: लकड़ हार बीट हंगर विला मदर करन अंगे कुला हाई विनाडी पनास देखाए
1: रेदुरु महतागे वेगय वेडिद कता करन पसुव कता किरीमट अवस्तावाक नोमेता

0: ता दित्त गत गुंधे गत
1: सा दित्त गत गुंधे गत
0: गद्र गत गत गत कुदंत
1: गद्र गत गुंधत गत गुदंत
0: ता दित्त तक दित्त
1: सा दित्त तक दित्त
0: गद्र गत गुंधर गत कुदंत।

0: अनुष्क रसांचित सिल्वा निर्माणयाक पार्टी के तले
1: ओ एना के यालो देन विनत
2: एनाई
1: हां यालो क्यूवट मन हित ने गैलो में किया अरे तो कथा कर लेनो मैं तुले इन परकला दी
0: सत्यंतये रात्रि 9:00 ITN බලන්න. පාටි කේතර.